विशेष आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: सुनोस ना, आइले हम लोग आने में 8 बजे के छा।
1: इस समय को साथ मा जितू सुनचांदी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो पर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर हुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: देगा और यो तो सात से एक से पाँच थोपलो चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले क्या हो।
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानी को भोग लायो। तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।

0: access to all.
1: Suvarna Avasar, Suvarna Avasar. इस आर्यस कंप्यूटर एकेडमी बाहर घरिमा 100% जॉब को गारंटी का साथ कंप्यूटर का विभिन्न कोर्स हरिमा नया भरना खुली हो।
2: यदि तपाई एसईई को परीक्षा दिए खाली समय को सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने आज आर्यस कंप्यूटर एकेडमी लाई संपर्क गर्नुहोस्।
1: हमरा कोर्स हरू
2: 3 महीने बेसिक कंप्यूटर कोर्स,
1: 7 महीने प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स,
2: 12 महीने डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स,
1: 18 महीने डिप्लोमा एंड ग्राफिक एप्लीकेशन कोर्स,
2: 12 महीने डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कोर्स,
1: 12 महीने हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स,
2: एडवांस एक्सेल,
1: डेली ईआरपी, ईमेल, इंटरनेट, इंग्लिश तथा नेपाली टाइपिंग।
2: नोट, हामी कहाँ गरीब जेहेन्दा तथा सीमांतकृत भाई बहिनीहरूको लागि निःशुल्क कम्प्युटर कोर्स सिकाइन्छ भने ग्रुपमा आउनेहरूलाई भारी छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
1: ग्रुप राइटर राजेन्द्र विक्रम खाँड र सुनिता उत्सै ठकुरी, आर्यस कम्प्युटर एकेडेमी, भिरकोटेक बैरघारी, तम समाज भवनको नजिकै।
2: सम्पर्क मोबाइल 98467-93928, 98461-20828 र 98460008।
0: रेडियो आदिखोला 105.4

एस आदि फ्ला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: सामने जाएगा और यो तो सात से एक से पाँच थोपलो चार मेगा हर्ज को रेडियो आदि खोले क्या हो।
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।